0: आई
1: की बो
0: आई
1: की आई
0: आई
1: की ता के आई ना के
2: जसलाई आई भन्यो भने पनि ब्रेक अप नै हुन्छ
1: भन न के आई
0: आई हेट यू